लोग हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ना अपना ख्याल करते हैं, ना घर का ख्याल करते हैं, ना सोसाइटी का ख्याल करते हैं, ना कम्युनिटी का ख्याल करते हैं। भागने वाले लोग भी हैं जिम्मेदारियों से, और कुछ लोग अगेंस्ट भी हो सकते हैं जिम्मेदारियों के, उस पर हमारी बात नहीं है कि हमारे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, ऐसे कोई नहीं हो सकते। दो किस्म तो ज़रूर है, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते तो हैं लेकिन उससे भागते बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते, ना पर्सनल लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में, ना फैमिली लाइफ में, और ना सोशल लाइफ में। कितने लोग हैं जो स्टक हो जाते हैं, आमदन जानबूझकर स्टक हो जाते हैं। कितने हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं कि ना फैमिली लाइफ में ना सॉल्व करना चाहते हैं और ना ही उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी जिंदगी गुजारना चाहते नहीं, स्टक हो गए दो दो साल से, तीन तीन साल से। ऐसे फैमिलीज हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना इस तरफ और ना उस तरफ। अगर करना नहीं चाहते, सॉल्व नहीं करना चाहते, कम से कम कंटिन्यू तो करो, ना तो ना कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व भी नहीं करना चाहते। बल्कि एक बात मैं और कह दूं, अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसे लोग हैं, कम्युनिटी में ऐसे कोई लोग हैं, उन्हें एडवाइस देनी होगी, ना तो ना सॉल्व नहीं करते बल्कि टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को, किसी का कि घर इस मरहले पर पहुँच जाए, यहाँ पर पूरे फैमिली वाले जिम्मेदार हो जाते हैं, पूरी सोसाइटी मुमकिन है रिस्पॉन्सिबल हो जाए, कुछ मुमकिन है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते भी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हमें तुम्हें कुछ करना है, कुछ करना है। देखिए हम कहाँ पर खड़े हैं, कुछ करते भी हैं या कुछ नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला नेकी की मिसाल में देता हूँ दो चार मिनट, कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है फ़अफ़अलुल खैर, तुम्हारे लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि कुछ नेक काम करो, नेकियाँ करना चाहिए। बुराई की तरफ अल्लाह कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम बुराई अंजाम दो, अम्र में मारूफ का मतलब यह है कि तुम्हें नेकियां अंजाम देनी होगी। वफअलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, सक्सेसफुल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो तो नेक काम अंजाम देते चले जाओ, ना तो ना नेक काम अंजाम दो। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डू गुड, नहीं जल्दी करना चाहिए नेक काम अंजाम देने में। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, जब बात नेकियों की आती है तो वो लोग जल्दी करते हैं, इसलिए कि नेक कामों का वक्त बहुत जल्द जाया हो जाता है। इतना डिले ना करो कि फिर नेक काम अंजाम देने में कोई टेस्ट ना मिले, कोई लज्जत ना मिले। क़यामत के दिन बाज़ नमाज़ें हमसे शिकवा करेंगी, कि शिकायत करेंगी कि तुमने मुझे ज़ाया कर दिया। मोइन कहेगा तो मैंने तो तुम्हें पढ़ा था, जाया कैसे कर दिया, का इतना डिले कर दिया कि फिर वो नमाज की लज्जत बाकी नहीं रहती। जल्दी करना चाहिए, ऑन टाइम। नमाजों की ताकीद क्यों है, कामों के बारे में मैं मिसाल नमाज की दे रहा हूँ, आप उसको दूसरी जगहों पर भी लगा सकते हैं। इन्नहुम कानु युसारिऊन फिल खैरात, क्यों हजरत जकरिया की फैमिली रोल मॉडल है दूसरों के लिए, इसलिए कि घर के सारे मेंबर्स हजरत जकरिया, हजरत जकरिया की जौजा, हजरत जकरिया के बेटे हजरत यहया, सब के सब युसारिऊन फिल खैरात, जल्दी करते थे नेक काम अंजाम देने में। नहीं जल्दी भी नहीं, सबकत लेना है, रैंक्स में हमें आना है, बी द नंबर वन टू डू द गुड डीड्स, पहले नंबर पर आना है। हम हमेशा कहते आखिर में जाएंगे, मैंने किसी तकरीर में कहा था जब मजलिस में हम बुलाते हैं आगे आओ, नमाज में बुलाते हैं आगे आओ, कोई आता नहीं है, लेकिन बगैर कहे नियाज की लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं। फस्तबिकुल खैरात, कहाँ पर फस्तबिकुल खैरात भैया, अगर पीछे ही खड़े होना है तो हर लाइन में पीछे होना चाहिए, लेकिन अपने नफ्स शामिल करता है बंदा, जहाँ अपनी ज़रूरत का एहसास होता है सबसे पहले, जहाँ पर कहा जाता है आगे आओ पहली सफ में ज़्यादा सवाब है, कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। बी इन द रैंक्स में आना पड़ेगा बंदे को। फस्तबिकुल खैरात, मौलाए कायनात की जो मदह की जाती है, तारीफ़ की जाती है, कई तारीफ़ों में, कई फजीलतों में एक फजीलत यह है कि हर काम में मौलाए कायनात सबसे पहले नजर आए। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल उकरा, सिर्फ आलम लेने में नहीं, सिर्फ तलवार लेने में नहीं, जंग के मैदानों में जो पैगंबर इस्लाम ने कहा कौन है इसके खिलाफ लड़ने वाला, इस जालिम के खिलाफ लड़ने वाला, वहां पर सबसे पहले खड़े होकर मैं कहने वाले मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम।

जी जल्दी करो, सबकत लो, रैंक्स में आना चाहिए तुम्हें, बी द नंबर वन। और लोग दूसरे लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ, नेकी अंजाम दी, जल्दी किया, रैंक्स में आ गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है दूसरों को भी नेकी की तरफ बुलाओ। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर, ऐसी उम्मत बनो जो दूसरे लोगों को नेकियों की तरफ इनवाइट करने वाले बनो। खामोश रह जाने से कभी भी किसी भी सोसाइटी की फलाह और बहबूदी नहीं हो सकती, वो कामयाब सोसाइटी नहीं कहलाएगी जो सोसाइटी खामोश होकर ज़िंदगी गुजारती है। नहीं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा, किसी को बुलाना पड़ेगा। यदउना इलल खैर, दूसरे लोगों को खैर की तरफ इन्वाइट करो, नेकी करो, जल्दी करो, रैंक्स में आओ, दूसरों को इनवाइट भी करो। बात खत्म हो गई? नहीं, अगर कोई दूसरा नेकी कर रहा है, वो तावनु अलल बिर्री व तक्वा, उसका हाथ बटाओ, उसके सपोर्टर बनो, बी द सपोर्टर ऑफ द गुड। जो लोग अंजाम दे रहे हैं नेकियां, उसके सपोर्टर बनो, नासिर बनो। जब उसका हाथ थाम लोगे, वो काम आगे बढ़ जाता है। इसी तरह घर भी चलता है, इसी तरह सोसाइटी भी चलती है। हम सबके सब रिस्पॉन्सिबल हैं। हमसे पूछा जाएगा, मैं क्या सवाल करना चाह रहा हूं आपसे माजरत के साथ, हम कहां खड़े हुए हैं, हम कहां खड़े हुए हैं? वी नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वी आर द सीकर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वी आर रनिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम कहां खड़े हुए हैं, ये हर इंसान को जवाब देना होगा, अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, और अपनी मैरिज लाइफ में कहां खड़ा हुआ हूं मैं। कुछ काम मुझे करने हैं, कर्जा है, जिम्मेदारियां हैं, निभाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं निभाऊंगा, तो अगर मैं रोल प्ले नहीं करूंगा अपना जो रोल है अपने घर में, अपने सोसाइटी में, सोसाइटी का नुकसान होता है। सोसाइटी बनती है सोसाइटी से नहीं, सोसाइटी बनती है घरों से और लोगों से बनती है। जब लोग अच्छे होते जाएंगे, जिम्मेदारियां पूरी करते चले जाएंगे, उसी तरह सोसाइटी मजबूत होती चली जाएगी। हम सब की जिम्मेदारी, मेरे अजीजों, कोशिश करें, तलाश करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन जिम्मेदारियों को पूरा करें, फुलफिल करें, कंप्लीट करें, परफेक्ट अंजाम देने की कोशिश करें। वो दिन दूर नहीं, हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ में एक बेहतरीन इंसान, और एक फैमिली लाइफ में एक बेहतरीन पेरेंट, और सोसाइटी में एक बेहतरीन मेंबर कहलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको तौफीक दे कि हम कुरानी उसूलों पर अमल कर सकें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिल मुरसलीन व शफीइल मुदनबीन नबियन محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبدأت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيدا شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم

0: सलामुन अलैकुम।
1: अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
2: होलिया इनका बिल्कुल अब्दुल बासित के बचपन की तरह है।
3: नहीं, खुद अब्दुल बासित।
0: मैं अली नजफी हूँ, मेरी उम्र 5 साल है, इंटरनेशनल कारी कुरान।
3: हमारे उस्तादों के साथ मुसाफा करना चाहते हो अली?
1: सलाम।
3: अली किस कारी की तरह?
0: अब्दुल बासित।
1: जानते हो अब्दुल बासित ने ये तिलावत कहाँ की थी?
3: क्या आप हमारे जजेस को पहचानते हैं?
0: शाकर नजात, हाथी गुलाम,
3: कासमिया,
0: कासमिया।
2: मुसाफा करो, हाथ मिलाओ।
1: तुम्हें क्या लगता है कि ये तोहफा क्या हो सकता है?
4: माशाल्लाह,
2: ये अब्दुल बासित के बचपन की गाड़ी।
3: अली जनाब उस्ताद अली अन नजफी, सलाम अलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: अलैकुम
3: अस्सलाम। आइए तशरीफ लाएं।
0: शुक्रिया।
2: होलिया इनका बिल्कुल अब्दुल बासित के बचपन की तरह है।
3: नहीं, खुद अब्दुल बासित है।
5: इससे ज्यादा जनाब अहमद से मालूम।
3: उस्ताद खुशामदीद।
0: शुक्रिया।
5: सिर्फ

0: मुझे अब्दुल बासित का बचपन याद है।
1: बिस्मिल्लाह।
2: सलामुन अलैकुम।
3: अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
2: खैरियत से हैं?
3: आप कैसे हैं मेरे अजीज?
2: मैं ठीक हूँ।
4: हमारे उस्तादों के साथ मुसाफा करना चाहते वाली?
3: सलाम।
4: नहीं नहीं, इस तरह कर रहे हैं। अली किस कारी की तरह?
2: अब्दुल बासित।
4: माशाल्लाह, अब्दुल बासित भी और इस्माइल मुस्तफा भी
2: जी।
4: है ना
2: जी।
4: मुस्तफा इस्माइल की तरह भी करते हैं।

0: हाज गुलाम,
1: हाज गुलाम,
0: कासमियान,
1: कासमियान,
2: मुसाफहा करो, हाथ मिलाओ।
0: और जनाब कासमियान के बराबर में कौन है?
1: जनाब उलू।
0: हसनैन,
1: हसनैन,
0: बारिकल्ला।
3: मेरा नाम जनाब रिसालत, जनाब रिसालत, सलाम। रिजवान क्या कर रहे हैं?
0: वाह वाह,
3: कहाँ से चुरा लाए हैं? कहाँ से लिया है? कहाँ से चुरा लाए हैं?
4: ये अब्दुल बासित के बचपन की गाड़ी है।
0: अली देखिए क्या लेकर आए हैं आपके लिए उस्ताद रिजवान। आओ इधर आओ।
5: सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, एक बोसा इस टोपी का भी। माशाल्लाह, तुम्हें क्या लगता है कि ये तोहफा क्या हो सकता है? खुद सोचो।
1: तोहफा?
5: कैसे समझ गए कि ये तोहफा है? अच्छा बताओ ये क्या है, मसलन क्या हो सकता है?
1: गाड़ी।
6: अल्लाह,
5: इसे खींचो, खींचो, यहाँ से खोलो, खींचो, यहाँ से खोलो, खींचो, अब यहाँ से खोलो। माशाल्लाह,
3: माशाल्लाह,
5: माशाल्लाह,
0: माशाल्लाह,
3: माशाल्लाह।
5: माशाल्लाह।
6: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
0: ما شاء الله.
5: मुबारक मुबारक इंशाअल्लाह।
1: अल्लाहु अकबर, अल्लाह।